0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
6: Oh, Julelal Kalandar, mast mast da, mast Kalandar, mast.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: प्यार भी न जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच। क्यों रे चले झूठ कहा?
1: नहीं गुरुजी सच।
0: थैंक यू वेरी मच मन।

0: भवसागर से वो तर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरुजी, ठीक है।

ये है लाइका गोल्ड सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ हमारे राम

0: extra but not piping hot.
1: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
2: Feel the fun. Play-O-Jo.
3: 18 plus gamble aware.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
5: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Mocha Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
5: Dil diya galla karange na.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Yet.
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
7: But how? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
11: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानकोसी भी सच सोचे सोच न हो वही जे।

हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

तो मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती।

जो तुद भाव है साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

महत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए।

0: ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट मंत्रा हॉलीडेज डॉट को डॉट यूके और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
12: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
13: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
14: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
15: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
13: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
14: Thanks. Playtime's over. Lovely.
16: Feel the fun. Play Ojo.
17: 18 plus, gamble aware.
18: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
19: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
20: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of a confusing part exchange. Because with We Buy Any Car, you'll have cash in the bank for more bargaining power on your next car. If only they could make getting to that countryside wedding simpler.
4: Make a U-turn. Make a U-turn.
3: Oh no. We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.
5: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
10: Your call is important to us You are currently number 25 in the queue
11: 25? Seriously?
10: Sounds like Ojo time.
11: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
10: Sorry about the wait. How can I help?
11: You can help me celebrate. I won!
12: Feel the fun. Play Ojo.
13: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gamble aware. T's and C's apply.
14: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
15: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
14: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
15: गारंटेड
14: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
15: फोन 02085748410
14: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Leica Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लीजिए लता जी के आवाज में गीता मेरा नाम फिल्म से था ये गाना, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक, और उससे पहले आपने सुना त्रिशूल फिल्म का गाना मोहम्मद जहूर खयाम के म्यूजिक पर। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहाँ कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आपको बता दूं कि आज ऋतु शर्मा स्टूडियो में हाजिर है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। आज किसी कारण से रवि शर्मा जी यहाँ नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनकी जगह इस शो में मैं आपका साथ निभाऊंगी। मैं जानती हूँ आप उन्हें मिस जरूर करेंगे, हम सब करते हैं, लेकिन आज वो नहीं आएंगे, इसलिए इस वीक यानी कि आज और कल मैं आपके साथ ही रहूंगी। फिर मंडे से आप रवि शर्मा जी को सुनेंगे उनके मनोरंजन प्रोग्राम में। लेकिन चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज भी प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक गाने सुनवाती रहूंगी जो आपको पसंद आए, और मौसम भी शानदार है, तो बस आप हमारा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बता दें कि आज 1 पाउंड के बदले में मिलेंगे आपको 127.8 भारतीय रुपए। और याद रखिए ट्रांसफर आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके ऐप के थ्रू करना होगा। लेकिन इस जून में, मतलब जून के एंड होने से पहले पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप 1000 पाउंड से ज़्यादा भारत भिजवाते हैं तो आपको 75 पाउंड का वाउचर मिल सकता है जब भी आप ट्रांसफ़र कराएंगे। और अगर आप 2000 पाउंड से ज़्यादा का ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपको मिलेगा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन। Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: 5 across. Full of positive swagger. Sorry, at HMRC we can't help you fill gaps in a crossword. But our new website can fill gaps in your pension and tax knowledge. Nothing cryptic, just simple explanations about the basics to help you get tax confident and understand how tax works in retirement. To learn more, search HMRC Tax Confident. Oh, that's it. Confident.
3: Ye hai Leica Gold. 10:35 a.m.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Sameer Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
2: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
1: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना फाइव कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
7: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
8: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
7: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
9: दिस ईद उल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिकली लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टुवर्ड्स अम्मीज फेमस बिरयानी वेयर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सेकंड्स Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लीजिए किशोरदा की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से था ये गाना, जिसे आपने सुना आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन से, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और एक बार फिर से याद दिलाती चलूं कि आप इस शो को रवि शर्मा जी के साथ सुनते आ रहे हैं सालों से, लेकिन आज किसी वजह से रवि शर्मा जी हमारे साथ नहीं है, बिजी है कहीं पर, इसलिए आज और कल उनकी जगह इस शो में मैं आपके साथ रहूंगी और मंडे से रवि शर्मा जी अपना शो लेकर आप सबको एंटरटेन करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि ये समय है समाचारों का, लेकिन उससे पहले थैंक यू कहते चले उन सभी लिसनर्स को जिन्होंने बड़े प्यारे मैसेजेस भिजवाए हैं। सहर जी, नरेंद्र पांचाल जी, पुनीता जी, थैंक यू, आई लव यू टू, है ना, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। मानसी जी, किरण जी हैरो से, अर्जुन जी, और ये कौन है जो मुझे लिख रही है, ऋतु शर्मा, नहीं रवि शर्मा जी, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं। और इसके अलावा फारूक जी, हेतु सोलंकी, एजाज जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। मिसेस फेके चियांग हमारे साथ हैं, तोची जी हैं, अनिल सोनी वियाना से हैं, प्रकाश थार जी, मिस शेख निर्मला जी और जितने भी साथी जहां कहीं भी साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है इस शो में। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और चलिए अब सुनवाते हैं आपको आज के प्रमुख समाचार।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

के थे और परिवार के मुताबिक उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया से जूझ रहे थे। परिवार के मुताबिक पिछले कुछ समय से उनकी सेहत लगातार खराब चल रही थी, उन्हें लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उर्दू शायरी को आसान और बोलचाल की भाषा में नई पहचान देने वाले बशीर बद्र ने पारंपरिक अंदाज से अलग सी अपनी शैली विकसित की थी और उनकी गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव दिखाई देते थे। उनके कई शेर आज भी मुशायरों और सोशल मीडिया पर अक्सर सुनाई देते हैं और साहित्य जगत में 1974 से 1990 के बीच का दौर उनके रचनात्मक जीवन का सबसे अहम समय माना जाता है और इस दौरान उनकी शायरी ने देश और विदेश में पहचान बनाई। केन्या से आ रही खबर है कि केन्या की राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गिलगिल के एक बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से 16 छात्रों की मौत हो गई है। घटना स्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए 74 यानी कि 74 अन्य स्टूडेंट्स को अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। केन्या रेडक्रॉस और पुलिस के मुताबिक उतुमिशी गर्ल्स स्कूल में ये आग आज सुबह उस समय लगी जब स्टूडेंट्स सो रहे थे। पुलिस ने कहा कि बचाव और राहत अभियान जारी है। अधिकारी अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं। केन्या रेडक्रॉस ने यह भी बताया कि आपातकालीन सहायता दल मौके पर मौजूद है और सभी को मदद दे रहे हैं और वहां के पुलिस कमांडर मसूद मिवी ने स्कूल के बाहर मौजूद अभिभावकों और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बेहद दुखद और पीड़ादायक स्थिति है। केन्या के बोर्डिंग स्कूल में आग लगने की घटनाएं असामान्य नहीं है। हाल के वर्षों में ऐसे कई घातक हादसे सामने आए हैं। हॉस्टल में स्टूडेंट्स की ज्यादा तादाद और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन न करना अक्सर बड़ी संख्या में हताहतों की वजह माना जाता है। भारत से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए पार्टी अध्यक्षों की नियुक्ति की है। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता पार्टी की नई अध्यक्षा होंगी जबकि त्रिपुरा में अभिषेक देवराय को पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। से एक और खबर आपको सुनवाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी पर संसद परिसर में अपने साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कल्याण बैनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के प्रति स्त्री विरोधी व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है और ये शिकायत ऐसे समय पर आई है जब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारत से जुड़ी कुछ और खबरें सुनाएं कि अग्निवीर योजना में बड़े बदलावों की तैयारी हो रही है। रक्षा मंत्रालय अग्निवीर योजना की समीक्षा पूरी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही 25% रिटेंशन यानी कि सेवा में बनाए रखने की जो सीमा है बढ़ाकर 50% से 70% तक करने और तकनीकी पदों के लिए उम्र सीमा बढ़ाने की बड़ी घोषणा हो सकती है। उत्तर और मध्य भारत में भीषण हीट वेव का दौर जारी है। दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कई शहरों में पारा 46 डिग्री से 48 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भी रेड अलर्ट जारी रखा है। वैसे मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है जिससे जून के पहले हफ्ते में दक्षिण भारत को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उधर आज सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में उतार

0: चढ़ाव देखा गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण आईटी की बैंकिंग शेयरों पर दबाव बना हुआ है। उधर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की नई कोशिशों के बीच गाजा पट्टी और राफा बॉर्डर पर हवाई हमले जारी हैं। यूएन ने मानवीय सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर की मांग दोहराई है। यूक्रेन ने यूरोपीय देशों से मिलने वाली नई लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके बाद रशिया ने अपनी सीमा पर सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को और मजबूत कर दिया है और दोनों तरफ से ड्रोन हमले तेज हो गए हैं। जिनेवा में आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग और डीप फेक से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें भारत सहित 50 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। और आपको सुनाते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर है और देखने की बात होगी कि इस बार आईपीएल का खिताब कौन लेकर जाता है। यही थे आज के प्रमुख समाचार।
1: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या धुन बनाई है रोशन साहब ने ममता फिल्म से, था ये गाना जो सुचित्रा सेन और धर्मेंद्र की एक यादगार फिल्म है। और मुझे याद आया कि लास्ट वीक यादें में हमने राजेश रोशन को याद किया था, उनके भी गाने बहुत सुंदर हैं। और राकेश रोशन की फिल्म्स कमाल की है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और ऋतिक रोशन का डांस कमाल का, यानी कि ये सारी जो रोशन फैमिली है या कहूँ नागरथ फैमिली है, मुझे सब पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं इनकी, जितना भी इन्होंने बॉलीवुड में योगदान दिया है। और निर्मला जी का भी कहना है कि ये गाना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, जिनका भी ये फेवरेट गाना है मैं उन सभी को डेडिकेट करती हूँ। नॉर्थ हॉल से प्रकाश सुतार जी हमारे साथ जुड़े हैं और गिरीश जी भारत से कह रहे हैं कि वीकेंड से पहले आपको सुनना अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वीकेंड शुरू हो गया है क्योंकि उन्हें आदत हो गई है वीकेंड पर मेरी आवाज़ सुनने की। तो वीकेंड आज नहीं, कल से वैसे शुरू हो ही जाता है फ्राइडे से, लेकिन आपको आज से शुरू करना तो आप कर सकते हैं। रानी जी स्लाव से हमारे साथ है, उल्लास टोरंटो से है और नरेंद्र पांचाल जी का कहना है कि शर्मा के बदले शर्मा, हमें तो कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए। मानसी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहती हैं नाइस टू हियर योर वॉइस, सो थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा आपने मैसेज भिजवाया काफ़ी दिनों बाद। और जितने भी साथी साथ दे रहे हैं सभी का एक बार फिर से स्वागत है, किरण जी हैरो से एंड ऑफकोर्स हमारे अर्जुन जी। और चलिए अगला गीत, मैं जानती हूँ आप सबका फेवरेट गाना है इंक्लूडिंग मी, उसको बजाने से पहले आपको एक बार चीज फिर से याद दिला दें।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: तो आपको याद दिला रहे हैं कि भाई अगर आपको कहीं घूमने घामने जाना है तो आप साउथ हॉल ट्रेवल पर फ़ोन कर सकते हैं या उन पर विजिट कीजिए, साउथ हॉल ट्रैवल पर विजिट कीजिए और कॉल कीजिए उन्हें 0208-857-8410 पर। अच्छी डील्स के लिए हॉलीडे डील्स इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल्स और ये सब एट ऑल प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड है। हम सब जानते हैं कि 40 सालों से ज़्यादा से साउथ हॉल ट्रैवल हमारी सेवा में हर समय उपलब्ध है और इन्हें ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी मिल चुका है। तो उनके साथ घूम कर आइए, बीचेस को एक्सप्लोर कीजिए, सिटीज़ को घूमिए, अच्छी डील्स पाइए और अपने टिकट्स, अपनी हॉलीडे आज ही बुक कराइए।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Five across, full of positive swagger. Sorry, at HMRC, we can't help you fill gaps in a crossword. But our new website can fill gaps in your pension and tax knowledge. Nothing cryptic, just simple explanations about the basics to help you get tax confident and understand how tax works in retirement. To learn more, search HMRC Tax Confident. Oh, that's it. Confident.
3: ये है
4: लाइका गोल्ड
5: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट ट्रेवल हब world.com।
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
11: in Dubai.
12: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
13: Lights on, shutters up, staff ready.
12: But today's customers don't start on the high street.
13: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
12: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
13: They walk into your competitors.
12: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
13: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
14: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
15: ये तो बताओ, कोई पता चला?
14: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
16: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
17: शीघ्र।
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
18: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड। આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
19: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
18: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
19: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
18: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
19: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
18: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
19: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
21: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.

0: कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक पर ये गाना कभी पुराना हो ही नहीं सकता, और हमारे गिरीश जी का भी यही कहना है कि ये गाना तो दिल में बसा हुआ है। चलिए, ये गाना मैंने आपको डेडिकेट किया, और थैंक यू भावना, आप साथ दे रही हैं और मौसम बहुत गर्म है, गार्डन में बैठकर प्रोग्राम सुन रही हैं। ये समय है गार्डन में पेड़ की छांव में कुछ समय बिताने का, और साथ में लाइका हो तो बस कहते हैं ना चार चांद लग जाते हैं, और वैसे ही आप कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, साथ देते रहिए। प्रज्ञा, थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए, और बस आपको बता दें कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में न्यूज़ के उस पार होगा चिंतन।
1: लाइका गोल्ड करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 105.4 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो IPL मैच की बात कर लें, कल राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच था जिसे राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया है 47 रन से।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
2: Leica Gold.
4: राम कृष्ण हरी, UK तयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 June ला होते है वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृती ची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash-in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simsy before we left London.
9: Simsy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya che Sakhna Rejo Husband ji. Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखना रेजो हस्बैंड जी
16: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग
17: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी
16: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर सेंट रिवर क्रूज एंड अ पेरिस सिटी टूर
17: डिपार्चर 5th of September कॉल नाउ ऑन 02073736333.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
19: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold.

0: अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजें आपने सुनी। 1999 की फिल्म बादशाह से लिया था ये गाना अन्नू मलिक का म्यूजिक, और यही गाना लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात चिंतन में।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. It's claimed the number of young people in the UK who aren't working, training or studying could hit 1 in 6 within 5 years. A government-commissioned review by a former health secretary says the figure is around 1 in 8 now. Alan Milburn's warning of a potential lost generation. 18-year-old Courtney's from Dudley and says the jobs market isn't easy right now.
3: People might see talks about it, joking about it all the time on my For You page. It's care, army, or you could be a retail manager, but you haven't got the experience, so you can't apply for those jobs. There's no jobs you can apply for. It's really hard in this generation, especially.
2: Police say drug driving's now a bigger problem in the UK than drink driving. After a month-long crackdown in December, substances were picked up in 52% of swabs taken behind the wheel. Thousands more alcohol tests were done, but positive results were much lower at 11%. Lindsay Stewart, whose brother Tim was killed by a drug driver, says his death was preventable.
4: We found out that the offender was a repeat dangerous driver, that he'd had a crash 10 days previously, also intoxicated with both drink and drugs. We were just horrified. Why was this man on the road? Why did he have a valid driving license?
2: A teenage boy's body's been pulled from a pond in Swanscombe in Kent. 8 children are among 10 people who are known to have died during the recent hot weather across the UK. Iranian state media claims Tehran's hit a US airbase overnight after fresh American strikes too. Donald Trump also denied agreeing to some points included in a reported draft peace deal. BP's ousted chairman says lies are being told about him. Albert Manifold's issued his second statement following his removal on Tuesday, disputing alleged conduct issues. And Uber's introduced a feature it says will help passengers feel safer. The taxi app says users can now record the audio of their journeys. The content will be encrypted. From Sky News, I'm Faye De Silva.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
5: Need anything from Tesco? Like half-price jammy Dodgers. Now, just 50p. Down from £1.
6: Club card accepted.
5: Because every little helps. Majority of larger stores, 140-gram pack, ends 3rd of June. Club card or app required.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं आज के मौसम की। और आज एक बार फिर से मौसम काफी गर्मा गर्म रहने वाला है। लंदन में फुल सनी डे है, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज को टच करेगा और मिडलैंड्स में भी आज टेम्परेचर 28 से 31 के बीच में ही रहेगा।
1: Special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
7: Like a gold.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: Like a gold. Chintan.
0: जी हाँ, बिल्कुल, ये है मनोरंजन शो जिसे आप रवि शर्मा जी के साथ सुनते हैं। लेकिन आज और कल किसी वजह से रवि जी यहाँ नहीं आ पाए हैं और इसीलिए उनकी जगह ऋतु शर्मा आपके साथ है। 11:03 हुए हैं और ये समय सालों से निर्धारित है चिंतन के लिए। चिंतन यानी कि आज के विचार के लिए। चिंतन में हमेशा ही ऐसी बात होती है जो आपको कुछ अच्छा या कुछ सोचने समझने पर मजबूर करती है। और आज की कहानी भी हमें कुछ सिखाती है, सिखा कर जाएगी। कभी कभार होता है इंसान अपने जीवन में कुछ पाने के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है,
6: अपने फायदे के लिए दूसरों का दिल दुखाता है और अपने मन को समझा लेता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सब कुछ सही किया है। लेकिन वो अपने मन को तो समझा लेता है, लेकिन क्या वो अपनी अंतरात्मा को समझा पाता है? क्या उसके अंदर गिल्ट रहता है? अगर रहता है तो वो इंसान है, और अगर गिल्ट ही नहीं किसी को हर्ट करके, तो मेरी समझ में वो इंसान भी नहीं। चलिए सुनाती हूँ एक कहानी। एक कहानी एक गांव की। गांव का नाम था सुखदेवपुर, और इस गांव में रामेश्वर नाम का एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, बिजनेसमैन। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो बहुत दान पुण्य करता था। कुछ लोग उसे महात्मा कहते थे। लेकिन रामेश्वर के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। अपने बिजनेस में सफलता के लिए, सक्सेस के लिए उसने कई बार गलत तरीके अपनाए थे, मिलावटें की थी, कुछ मासूम लोगों को धोखा भी दिया था। और जो भी कोई उसे देखता था बाहर से, सभी लोगों को वो बड़ा ही सुखी, प्रसन्न, अमीर दिखाई देता था, लेकिन अंदर से उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन की बात है, गांव में एक सिद्ध संत आए। सभी लोग उन संत के दर्शन करने जा रहे थे, तो रामेश्वर ने सोचा, मैं भी होकर आता हूं। अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला और उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली संत महाराज के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, मान सम्मान, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे हर समय एक अनजाना डर सताता रहता है, कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बताइए। उन संत महात्मा ने रामेश्वर की आंखों में देखा और मुस्कुराए, और उन्होंने सोने की थैली रामेश्वर को वापस कर दी और अपने झोले से एक छोटा सा कांच का आईना यानी कि दर्पण निकाला और रामेश्वर को हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, रामेश्वर, रोज रात को सोने से पहले एकांत में बैठना और इस दर्पण में अपना चेहरा देखना और खुद से एक सवाल पूछना कि क्या आज मैंने जो भी किया उससे मेरा मन खुश है? क्या आज मेरा कोई भी कर्म किसी की आंखों में आंसू लाने का कारण बना है? बस इतना ही करना। रामेश्वर ने वो दर्पण संत से लिया और वहां से चल दिया, और उसने वैसा ही किया जैसा संत ने उससे करने को कहा। पहली रात जब उसने एकांत में दर्पण देखा तो उसे अपने चेहरे के पीछे उन लोगों के रोते हुए चेहरे दिखाई दिए जिसे उसने धोखा दिया था, और ये सब देखकर उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर कर रख दिया। वो समझ गया कि जिसे वो छिपाना चाहता था उसका मन का दर्पण उसे साफ साफ दिखा रहा था। रामेश्वर को एहसास हो गया कि जब तक आपके मन का दर्पण साफ नहीं होगा ना, तब तक जीवन में शांति नहीं मिल सकती। और अगले ही दिन उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया उसने उन सभी लोगों को ढूंढकर उनका पैसा लौटाया जिन्हें उसने धोखा दिया था। उसने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतनी शुरू कर दी और अब वो दान पुण्य सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करता था। कुछ महीनों बाद जब उसने फिर से रात को उसी दर्पण में अपना चेहरा देखा तो इस बार उसे कोई ग्लानी, कोई गिल्ट, कोई डर अपने चेहरे पर नहीं दिखा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और सच्ची मुस्कान थी क्योंकि उसका मन अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी अदालत जो होती है ना, वो हमारी अंतरात्मा होती है। हम दुनिया की नजरों में कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर हमारे कर्म गलत हैं तो हमारा मन हमें कभी माफ नहीं करेगा। एक गिल्ट हमेशा मन को कचोटता रहता है, लेकिन अगर कोई इंसान इंसान ही नहीं है जिसे गिल्ट ही नहीं है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आप इंसान हैं और आपने किसी के साथ गलत काम किया है तो आपके मन में गिल्ट जरूर रहेगा। और जब तक हम अपने मन के दर्पण में बिना किसी डर या शर्म के आंखें डालकर न देख सकें तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। किसी ने सच ही कहा है, तन की सुगराई यानी कि सुंदरता, तन की सुगराई कुछ भी नहीं मन की सुगराई मान, यानी कि तन की सुंदरता से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। बाहर से आप बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आपका मन विषैला है तो ऐसा इंसान क्या किसी को सुख दे पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि काम ऐसा करें जो आपकी अंतरात्मा को परेशान ना करे, क्योंकि कुछ भी करने के बाद दुनिया को आप कुछ भी कह लीजिए, आप अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते।

0: जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भरे भुले सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा आईना है। हम दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से कुछ भी नहीं छुपा सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए बहुत से लोगों को चोट पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ऐसे लोगों से चोट खाई होगी, लेकिन जो लोग चोट पहुंचाते हैं उनके लिए बस यही कहूंगी कि जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। और यही था आज का चिंतन। बहुत सारे साथियों ने आज के चिंतन को पसंद किया है। थैंक यू बुशी से जगजीत सिंह जी, थैंक यू ललित छत्रिसा जी, थैंक यू शेखर आनंद जी, उल्लास जी, थैंक यू गिरी जी, सहर जी, अर्जुन जी, रागिनी जी, थैंक यू नलिनी जी, हरविंदर जी, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू कहती हैं, पर ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। सही कहा, बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। रानी जी इस्लाव से स्वागत है आपका, थैंक यू। एंड हमारे राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं आपने बड़ी ही सुंदरता पूर्वक चिंतन प्रस्तुत किया है। हम केवल तभी स्वतंत्र हो सकते हैं जब हम अपने अंदरूनी स्वभाव के प्रति सच्चे रहें। बात बिल्कुल सच है, और आज के चिंतन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोच विचार करने वाली हैं। मन का गिल्ट जब रहता है ना, तो स्ट्रेस रहता है, और आजकल के जमाने में स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियां देता है, बहुत सारी परेशानियां देता है। इस बारे में बहुत देर तक बातें की जा सकती हैं, लेकिन थैंक यू कहूंगी आज के चिंतन को आप सबने पसंद किया है। लौटते हैं अब आज के बैक टू बैक गीतों की ओर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 127.8 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. और हाँ, आपको बता दें कि end of June तक आप £75 का voucher पा सकते हैं जब आप ट्रांसफर करते हैं over 1000 pounds. और आप 1 ग्राम गोल्ड कॉइन आपको एवरी वीक मिल सकता है व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइक अ गोल्ड।

0: सैटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344।
2: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
3: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स।
3: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
3: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
2: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 0730099823।
3: बुक योर टेबल टुडे।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो।
5: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
6: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
13: Hum se sasta kahi nahi mil sakta.
14: TravelHub.
13: At all protected.
4: Leica.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: अपने जमाने की फिल्म ब्लफ मास्टर से था ये गाना, और जिसमें ब्लफ मास्टर बने थे शम्मी कपूर, और उससे पहले मदर इंडिया फिल्म का गीत नौशाद का म्यूजिक। और लीजिए, दो बैक टू बैक क्लासिक गीत आपने सुने। ये है रवि शर्मा जी का मनोरंजन प्रोग्राम, जिसमें आज ऋतु शर्मा है आपके साथ। और आप सभी को याद दिला दूं कि रवि जी कहीं बिजी हो गए हैं, किसी वजह से वो याद नहीं आ पाए हैं, इसलिए शो में मैं उनकी जगह आपका साथ दे रही हूँ। मंडे से रवि शर्मा जी फिर होंगे आपके साथ, लेकिन आज और कल इस शो में मैं आपके साथ रहूंगी, और वीकेंड्स पर तो होगा ही हमारा साथ। और हमारी शायद भावना जी या हमारी एक लिसनर कहती हैं कि इस बार वीकेंड थोड़ा जल्दी आ गया। यस, आप लोगों को मेरी आवाज़ वीकेंड पर सुनने की आदत हो गई, और कुछ साथी कहते हैं कि अरे हमने आपकी आवाज़ सुनी और फिर चेक किया कि आज कहीं सैटरडे तो नहीं है। तो आज सैटरडे बिल्कुल भी नहीं है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, और फिर आएगा सैटरडे संडे, लेकिन मैं आपके साथ संडे तक रहने वाली हूँ यहाँ पर। मौसम बहुत ही शानदार है, मतलब मेरे लिए तो है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल है। वैसे कल बहुत अच्छा था, कल जब मैं बाहर निकली तो अच्छी खासी हवा चल रही थी, जिसमें ठंडक थी, और न गर्मी थी न ठंडक थी, तब परफेक्ट वेदर था कल। 26 डिग्री टेम्परेचर मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन आज 2-4 डिग्री थोड़ा आगे चला गया है, तो आज गर्मी हो गई है, जो कुछ लोगों को शायद परेशान कर रही होगी। लेकिन उन लोगों को बता दूँ कि मंडे से आपको फिर राहत मिलेगी, क्योंकि मंडे से बारिश भी आने वाली है, बादल भी आने वाले हैं, और मौसम एक बार फिर से ठंडा हो जाएगा। यानी कि अब ऐसे ही चलता रहेगा, किसी दिन ठंडा किसी दिन गर्म, तो बस ऐसा ही चलता रहे। हम तो चाहते हैं एटलीस्ट 2-4 महीने तो हमें ऐसा मौसम देखने को मिले। आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू पुनीता जी, आप कुकिंग कर रही हैं, ये क्या बनाया है? दही वड़ा, ओह माय गॉड, दही वड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, और ये आपने क्या सुंदर बनाया है ना, अनार के दाने वाने डालकर, क्या डिलीशियस दिख रहा है। ये तो नहीं कहूँगी कि लग रहा है, दिख रहा है, आई एम श्योर डिलीशियस होगा। तो बस आप बढ़िया कुकिंग करते जाइए, अच्छे अच्छे गाने मैं हूँ ना, मैं सुनवाती रहूँगी। एक और गीत आप सबके लिए।
1: ये है Like a Gold Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: किशोरदा और अनुपमा की आवाजों में था ये गाना, और एक बार फिर से म्यूजिक राजेश रोशन का। जैकी श्रॉफ डिंपल कपाड़िया की फिल्म, जिसे बनाया था महेश भट्ट ने, और आज काफी दिनों बाद इस गाने को प्रोग्राम में जगह मिली है। आप सबने इस गीत को पसंद किया है। निर्मला जी, आपको ये गीत अच्छा लगता है? चलिए ये गीत आपको डेडिकेट किया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और आप सबके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। थैंक यू प्रीति, आपको भी ये गीत पसंद है, आपको डेडिकेट किया। दिव्या जी हैरो से हैं, भारत गंगाराम जी आप हमारे साथ हैं, नमस्कार। दिनेश पोपट जी आपको भी नमस्कार कहते हैं। चिंतन अच्छा था, थैंक यू। थैंक यू भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी मैसेज के लिए। थैंक यू मीना लखानी जी, और आप सब कह रहे हैं कि चिंतन अच्छा था, तो चिंतन में आज बात की गई थी धोखे की। यस, धोखे की। और आपको बता दूं, धोखे से मुझे याद आया कि मैं आजकल ट्रेटर्स देख रही हूँ, जो इंडिया वाला ट्रेटर्स है। यहाँ का तो मैंने देखा है, मुझे सारे बहुत पसंद है और मैं वेट करती हूँ कि कब नया आएगा, लेकिन फ़िलहाल इंडिया वाला ट्रेटर बीबीसी आई प्लेयर पर है, आप देख सकते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बताऊंगी नहीं कि उसमें क्या क्या हुआ है, अगर आप शौकीन है तो देखिए, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ लग रही है, मैं वो बोलूंगी नहीं। उसको होस्ट किया है करण जौहर ने, और मेरा मानना है कि शायद कोई और करता तो शायद और थोड़ा बेटर हो सकता था, बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैंने 2-3 एपिसोड ही देखे, और अगर आपको भी पसंद है ये सब तो देखिए, मज़ा आता है, मुझे तो अच्छा लगता है, इंतज़ार रहता है कि कौन आउट होगा नेक्स्ट डे। तो आई प्लेयर पर है इंडिया का ट्रेटर, बताइए, देखिए और फिर मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लगा।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। Leica Extra podcast update.
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है, जिसमें टाइटल है डोमेस्टिक वायलेंस, और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल, स्पॉटिफाई और जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर जाकर सुन सकते हैं। सभी जगह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस।
5: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
6: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: राम कृष्ण हरी।
5: UK. Feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
13: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद
14: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
13: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs अप्लाई
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: झुक गया आसमान, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू की फिल्म, और राजेंद्र कुमार हुए, शम्मी कपूर हुए, देवानंद हुए, इन सभी के गाने, इन सभी की फिल्मों के गीत इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि मुझे लगता है कि आप सभी को पता है कि गाने की अगली लाइन कौन सी है, म्यूज़िक का पीस कौन सा है। यू नो, ये गाने इतने ज़्यादा हमारे अंदर रचे बसे हैं कि जब हम इन गानों को किसी के मुंह से सुनते हैं और अगर उसने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो हम फौरन पकड़ लेते हैं कि अरे ये गलत कर दिया। मतलब इतने ज़्यादा सुने हुए हैं ये गाने, तभी आपको इतने पसंद है। जासू जी कहती हैं क्या गाना लगा रही हो रितु, ये दोनों मेरे फेवरेट गीत हैं। और यही कहना हमारे महेंद्र बजारिया जी का है, ये वाला गाना जिसमें शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, और उससे पहले मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, किशोरदा और आशा चिनॉय की आवाज थी। आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और सभी सुनने वालों का स्वागत है इस शो में। और आपको याद दिला दूं कि मैं रितु शर्मा हूं, वीकेंड्स पर आपका साथ देती हूं, लेकिन इस शो में सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। रवि जी आज नहीं आए हैं, कल भी नहीं होंगे आपके साथ, और उनकी जगह इस शो में मैं आपका साथ दूंगी। थैंक यू प्रीति, कहती है तुसी तो कमाल किता, ओह आप पंजाबी हो क्या लेकिन आप हमेशा साथ देती हैं, और कहती हैं कि ये गर्मी है ना मेरी वजह से है, मैं अभी भारत होकर आई हूँ और वहीं से ये गर्मी लाई हूँ वैसे प्रीति आपने अच्छा किया, लेकिन थोड़ी कम ले आती, इतनी ज़्यादा लाने की क्या ज़रूरत थी। एनीवेज हम तो इन्जॉय कर रहे हैं इस मौसम को, और स्वागत है आपका इस शो में। कुछ और मैसेजेस भी आए हैं, अहिर यादव जी आप हमें सुन रहे हैं, स्वागत है आपका। गुरुदेव गांजा आपका भी स्वागत है इस शो में, थैंक यू। और ये मैसेज आया है ज्योति वर्मा आपका, आपने बताया है कि आप द ट्रेटर्स जो इंडिया का है देखा है आपने, पूरा देख लिया है, और आपने अपनी ओपिनियन बताई है कि आपको कैसा लगा, तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। वैसे मैंने तो अभी शुरुआत की है, अभी 2-3 एपिसोड्स ही देखे हैं, और उसमें कौन कौन आउट हो गया है ये मैं नहीं बताऊँगी, नहीं तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, है ना, और ऐसा तो मैं करना नहीं चाहती हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको दिलाएगा 127.8 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा by SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. और एक और चीज याद दिला दें कि before end of June आप को मौका मिल सकता है जीतने का 75 पाउंड का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, एंड आल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Gold.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ कोई पता चला?
4: गुरु गुरु
5: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है, सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
3: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक अ गोल्ड।
7: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
12: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
11: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
15: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
16: No more worries for me or you.
17: Southall Travel, Atoll Protected.
18: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya che Sakhna Rejo Husband ji Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860280655 सकना जो हस्बैंड जी।
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
20: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
21: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
22: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
20: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
21: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
23: Feel the fun. Play Ojo.
22: 18 plus, gamble aware.
24: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
25: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: 1990 की फिल्म दिल से था ये गाना, जिसका म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने, और इन्हें इस फिल्म में म्यूजिक के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन बाजी माधुरी दीक्षित मार ले गई। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर का। लेकिन गाना बड़ा ही सुंदर है, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, और आप जानते ही हैं कि अनुराधा पौडवाल हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, और ये गाना गुरुदेव आपको बहुत पसंद है। चलिए, आपके नाम पर किया हमने ये गाना, और इसके अलावा फारूक जी आपने भी इस गीत को पसंद किया है, और विजय गुडोरी जी आपका भी मैसेज आया है, आपने लिखा है कि इससे पहले जो आपने श्रीदेवी का मिस्टर इंडिया का गाना बजाया था, उस गाने को सुनकर आपको मेरी याद आ गई। मुझे पता है आपको मेरी याद क्यों आई, क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना था और वहाँ पे किसी बॉलीवुड स्टार के तरह ड्रेसअप होना था। अब आजकल पार्टीज जो होती है वो थीम पार्टीज होने लगी हैं, कोई कुछ भी थीम रख देता है, तो उसमें यही थीम था। अब मुझे सूझे ही ना कि मैं क्या बनूँ, और वैसे ही मुझे श्रीदेवी ने जैसी साड़ी पहनी है वो कलर की साड़ी मुझे मेरे पास मिल गई, तो बस मेरी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। मैंने कहा चलो श्रीदेवी ही बन जाती हूँ। वो भी एक फन था उनकी तरह पोज देना, लेकिन कहाँ श्रीदेवी की हम कॉपी कर सकते हैं। कमाल की स्टार थी, लेजेंड थी, और बहुत सारे लोगों की फेवरेट थी, उनमें मैं भी एक हूँ। सो थैंक यू, आपने मुझे भी वो सारी यादें ताज़ा करा दी विजय जी, हमेशा ही आप हमारा साथ देते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए, अगला गीत मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी की आवाज में साथी फिल्म से था ये गाना, जिसमें राजेंद्र कुमार थे, साथ में थी वैजयंती माला। और ये गाना हम हमारे विजय कुटूरी जी को डेडिकेट करते हैं। और उसके अलावा ये गाना प्रज्ञा आपके भी नाम पर जाता है और आप इसे गाने को मेरे नाम पर करती हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें,
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो मैं बात करने वाली हूँ उस शो की जिसका नाम है हमारे राम। और ये शो होने जा रहा है एवंतिम अपोलो, लंदन एवंतिम अपोलो में 9 से 12 जुलाई के बीच में। और इसमें राम की भूमिका में नजर आने वाले हैं राहुल आर बुचार और रावण बने हैं आशुतोष राणा, जिनकी क्या आवाज़ है। मैं उनकी कविताएं सुनती हूँ, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और जिस तरह से वो कविताएं पढ़ते हैं ना, सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत पसंद है आशुतोष राणा। इस फिल्म में मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो रावण का कैरेक्टर निभाएंगे तो किस तरह से निभाएंगे। उनकी दमदार आवाज़, उनकी शानदार एक्टिंग, मुझे लगता है कमाल होगा। इस शो को अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से टिकट्स बुक कराइए लाइका रेडियो नेटवर्क इस माइथोलॉजिकल शो के, जिसका नाम है हमारे राम, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं। और फिर से याद दिला दूँ कि ये शो होने जा रहा है बिटवीन 9th and 12th July एट लंदन्स एवंतिम अपोलो।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लीजिए वन ऑफ माय फेवरेट गाना जो आप सभी का फेवरेट है, और क्या कहूँ आपको, फिर से हम एक बार याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है द आतिफ असलम लंदन कॉन्सर्ट्स के, और वहाँ पर भी आपको कुछ नए ज़माने के कुछ आतिफ असलम की आवाज़ में गाए हुए गीत सुनने को मिलेंगे। और ये शो होने जा रहा है संडे 14 जून एट दी O2 लंदन को, O2 लंदन में टिकट्स अवेलेबल है एट AXS एंड द वेन्यू पर, तो आप टिकट्स बुक कराइए। आतिफ असलम के आप फैन हैं और उनको शो सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल इस शो को मिस मत कीजिए।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: और साथ ही साथ अगर हॉलिडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो वही हम आपको बताएंगे कि साउथ ओल्ड ट्रैवल से बेहतर और क्या, उनको फ़ोन कीजिए या फिर विजिट कीजिए साउथ ओल्ड ट्रैवल पर जाकर और घूम कर आइए बीचेस अच्छी अच्छी सिटीज़ में, और वो आपको देते हैं न सिर्फ अच्छी डील्स बल्कि फ्लाइट होटल्स भी आप साथ में बुक करा सकते हैं। 40 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं और इन्होंने ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है, तो हॉलिडे जाने के लिए टिकट बुक्स कराइए, बुक कराइए साउथ ओल्ड ट्रैवल पर जाकर।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Ye hai
3: Like a Gold
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
7: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना, ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव, टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
13: T's and C's apply.
14: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
15: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स।
16: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
15: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स।
3: Be part of a historic grand opening.
6: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
3: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
6: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
3: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
18: 25? Seriously?
17: Sounds like Ojo time.
18: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
17: Sorry about the wait. How can I help?
18: You can help me celebrate. I won.
19: Feel the fun. Play Ojo.
20: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
21: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: या अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ है प्रोग्राम में, कुछ गीतों में एक जैसा है, तो आज के प्रोग्राम के इस आवर के गीतों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आवर में हम महबूब खान साहब को याद करेंगे ज़रूर, और बहुत ही बहुत चुनिंदा चुनिंदा गीत आपके लिए मैंने क्यों किए हुए हैं। ये गीत था फ्रॉम द फिल्म मेरे सनम, 1965 की फिल्म थी। मोहम्मद रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ में आपने इस गीत को सुना, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: yeah.
1: वेल कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सैंडी शाह के प्रोग्राम में आप शामिल हैं और वो भी विंटेज गोल्ड? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. विंटेज गाना ज़रूर था, फिल्म का नाम था शराबी. एंड शराबी के वैसे सारे गाने ही बड़े मशहूर हुए थे. मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की यंग आवाज़ों में आपने सुना इस गीत को. होप यू इन्जॉयड इट. डॉक्टर कालरा हमेशा इन गीतों को बहुत पसंद करते हैं. स्वीटी जी आप भी, तो मुझे उम्मीद है आपने इन्जॉय किया.
2: बाली ब्रह्मभट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, currency का रेट आपको बता देते हैं. एक पाउंड के बदले आज इंडियन रुपीस मिलेंगे 128.62, पाकिस्तानी रुपीस 374.48, श्रीलंकन रुपीस 442.58, बांग्लादेशी टका 165.5, अफगान अफगानी 84.14.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cashback when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And Gold Rate is this what market mein chal raha hai. £105.75 ka 1 gram sona.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: रे भैया।
1: प्रोग्राम के दूसरे भाग में हमने कदम रखा और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट आवर आपने पसंद किया। खिचड़ी पकी थी, यस। इस आवर में महबूब खान साहब को हम याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। आज 28th of May 1964 में 57 ईयर्स की एज में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। महबूब खान साहब, जिनका असली नाम था रमज़ान खान, 9th September 1907 में उनका जन्म हुआ था और 28th of May 1964 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर डायरेक्टिंग द सोशल एपिक मदर इंडिया, कैसे भूल सकते हैं, इन 1957, विच वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर, 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड वॉज अ नॉमिनी फॉर एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। उन्होंने बहुत काम किया है इस इंडस्ट्री में और जितना भी काम किया, यादगार काम किया है। उनकी फिल्मों के नाम मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत अर्ली, वेल 30s में ही उन्होंने शुरू कर दिया था। एंड इन्होंने भारतीय सिनेमा को मदर इंडिया जैसा, एक जैसे कहते हैं ना, महाकाव्य दिया महबूब खान साहब ने। और उनकी फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरा समाज सांस लेता था। आज हम बात कर रहे हैं जिनकी, उनका भारतीय सिनेमा में महान योगदान रहा है। वो एक बहुत ही माने हुए फिल्मकार है जिसने अपनी फिल्मों से पूरे देश की आत्मा को पर्दे पर उतार दिया। एक ऐसे निर्देशक जिनकी हर कहानी में संघर्ष, जज्बा और इंसानियत की खुशबू थी। और बात मैं कर रही हूँ महबूब खान साहब की, तो उनकी शुरुआती जीवन के बारे में भी बताऊंगी, उन्होंने किस तरह से इस फील्ड में कदम रखा था। लेकिन आइए आप ज़रा आगे नेक्स्ट ये काम कर।
2: बाली ब्रह्मभट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: SBI UK वालों के जरिए पैसे अगर आप इंडिया में भेजना चाहते हैं तो your £1 in British sterling can get you up to 128 rupees and 25 paisas. It depends कितने पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
4: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: 105 super hit shows pachi have London ma aavi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line aavi rahya che Sakhna Rejo Husband ji, Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखना रहो हस्बैंड जी।
8: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, देशा राइस का है जमाना।
0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
9: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
9: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.
13: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-633 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
15: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
17: सो Your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
18: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
19: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
17: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
18: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
20: Feel the fun. Play Ojo.
21: 18 plus number one.
22: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagoon.com.
23: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: वन ऑफ माय फेवरेट्स टू, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। सन ऑफ इंडिया फिल्म से मैंने इस गीत को चुना था, 1962 की फिल्म थी। तो शुरुआती जीवन की बात करें तो महबूब खान साहब का जन्म 1907 में गुजरात के बिलीमोरा में हुआ था। कहते हैं कि सपनों का कोई ठिकाना नहीं होता है और महबूब साहब का सपना उन्हें मुंबई ले आया। मुंबई में उन्होंने शुरुआत में एक असबल में भी काम किया था एंड फिर फिल्मों में एक्स्ट्रा बने और धीरे धीरे निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। 1935 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म अल हिलाल बनाई और यहीं से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: महबूब खान साहब की फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं होती थी बल्कि पूरा समाज सांस लेता। औरत 1940 में बनी थी जिसमें एक गांव की ग्रामीण भारत की पीड़ा और संघर्ष को दिखाया गया। फिर बनाई उन्होंने अंदाज 1949 में दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस की तिकड़ी वाली सुपर हिट फिल्म। देन ऑन इन 1951 भारत की पहली टेक्निकल फिल्म बनी थी ये। और देन अमर इन 1954 सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक बहुत ही सीरियस फिल्म थी, संवेदनशील जिसे कहते हैं वैसी फिल्म थी। और फिर आई वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया और वो फिल्म थी मदर इंडिया, एक महाकाव्य। 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय नारी की शक्ति, त्याग और संघर्ष का प्रतीक बन गई। नरगिस के अभिनय ने इस किरदार को अमर कर दिया था, अमर बना दिया था। फिर ये फिल्म ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के रूप में गई थी और ये भारत की पहली ऑस्कर नामांकित फिल्म बनी थी। एंड और भी बातें हैं बताऊंगी थोड़ी बहुत साथ साथ, पर साथ साथ गीत भी।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: Like a Gold. Like a Radio Network is the exclusive radio partner of the Atif Aslam London concert taking place on Sunday, 14th June at the O2 London. Tickets are available at AXS and the venue.
2: का वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: अरे भाई, बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं गीतों की और सब बहुत पसंद कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। महबूब खान साहब ने एक मिसाल कायम की थी। 1963 में महबूब खान साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उनकी फिल्में आज भी जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए एक पाठशाला है कि उन्होंने ये बताया कि हिंदी सिनेमा जो है सिर्फ मनोरंजन एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि समाज का एक आईना भी है। महबूब खान साहब भले ही 1964 में इस दुनिया से चले गए लेकिन उनकी बनाई कहानियां, उनके किरदार और उनका सिनेमा आज भी जिंदा है क्योंकि सच्ची कला कभी मरती नहीं है, वो पीढ़ियों तक इसी तरह से दिलों में बसती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की आपने ज़रूर पसंद की है।
1: बाली ब्रह्मभट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आइए एक बार फिर से आपको करेंसी का रेट बता दें। इंडियन रुपीस आपको मिल सकते हैं एक पाउंड के बदले 128.62, पाकिस्तानी रुपीस 374.48, श्रीलंकन रुपीस 442.58, बांग्लादेशी टका आपको मिलेंगे 165.3, अफगान अफगानी 84.14.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate is what market mein chal raha hai, 105 pounds and 75 pence ka 1 gram sona.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Like a Gold, London's number one Asian retro music station.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
5: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र।
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208514540। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
10: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
10: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simzy before we left London.
10: Simzy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
13: T's and C's apply.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
14: high appreciation
15: in Dubai.
16: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
17: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

What a beautiful song from the film Anokhi Ada, Mukesh साहब की आवाज़ थी। मुझे उम्मीद है कि महबूब खान साहब पर जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की और साथ ही जो गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल किए आपको पसंद आए। और नेक्स्ट आवर में मिलते हैं हम और कुछ मिले जुले गीत शामिल रहेंगे। सुनते रहिए साथ इस तरह से।

0: प्रोग्राम का लास्ट एंड द फाइनल आवर और दो बैक टू बैक गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने नरसिम्हा से चुना था 1991 की फिल्म और दूसरा गीत फिल्म दहलीज से था. पहले गीत में आवाज़ें उदित नारायण की थी और साथ कौन दे रही थी, अलका याग्निक. एंड इस फिल्म में थे विवेक मुश्रान और साथ में थी उर्मिला मातोंडकर. उर्मिला मातोंडकर ने काफ़ी फिल्मों में बाद में काम किया लेकिन विवेक मुश्रान बहुत ज़्यादा नहीं फिल्मों में आए थे. आई थिंक विवेक मुश्रान ही थे. एनीवे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट किया जा सकता है. एंड दूसरे गीत में आवाज़ें थी आशा भोसले एंड महेंद्र कपूर साहब की. उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए. अभी अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम. आपने पिछले दो घंटे का प्रोग्राम मिस कर दिया तो ऐसा मत किया करें. एक बजे से लेकर चार बजे तक आजकल मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ सिटिंग इन फॉर वन एंड ओनली बाली ब्रम्बर.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to kitne paise? 128 rupees and 25 paisas. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like a gold.
3: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड.
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
5: फोन 02085748410.
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away, so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
7: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, event in Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalog today. Call on 02085077900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald Packaging.
10: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 310 0. Atoll protected.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
11: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
12: Be part of a historic grand opening.
3: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
3: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
14: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: बहुत प्यारा गीत था जो मैंने चुना था, जीना तेरी गली में फिल्म से, 1991 की फिल्म थी। वैसे तो अनुराधा जी ने बहुत से सोलो सॉन्ग्स भी गाए हैं और बड़े मशहूर गाने हैं, लेकिन मैंने चुना ये गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ जी की आवाज़ों में, मेरी जिंदगी तेरे नाम। बहुत अच्छा गीत था, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। आइए अब आगे बढ़ लें।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अभी एक से बढ़कर एक गीत हैं और सारे के सारे गीत आपको पसंद आ रहे हैं, आपके मैसेजेस बराबर मिल रहे हैं। थैंक यू एवर सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। चलिए अब आगे बढ़ लें।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Chawal ho best, sab kare test, Disha rice ka hai zamana.
0: Disha Basmati Rice. Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
13: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry am shape mein hai wo bachpan ki yaad.
14: Snack time hunger ko banaye aur bhi taste. With Jaimin's Fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or shizwan with best quality and same ethnic taste.
13: Jaimin Fryams, available at your nearest ethnic grocery stores.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
16: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत
5: कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208767627।
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
19: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: हुस्न वालों की जब भी तारीफ होती है उन्हें अच्छा ही लगता है सुनने में। 1961 की फिल्म घराना से चुना था इस गीत को। पुरुषोत्तम जी थैंक यू सो मच। वीजू आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम। पुष्पा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस शेख, तोशी जी, संध्या भावसर, उल्लास जी एंड जगतार जी, आप सभी हमारे साथ हैं। विपिन जी, दिनेश पोपट जी, भरत गंगाराम जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: Goldrate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि मार्केट में गोल्ड का रेट इस वक्त क्या चल रहा है। इस 105 पाउंड्स एंड 75 पेंस का एक ग्राम सोना आप खरीद सकते हैं।
1: Goldrate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Leica Gold. Traffic and travel.
2: This is Martin with your travel. It's slow on the A312, the partway southbound, before you get to the M4 Junction 3 this afternoon. The A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to North Holt Station. Slowing on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner. A3 West Hill westbound, busy around South Circular. That's coming from the one-way system. To the Tube, and no service on the District Line between West Ham and Whitechapel, and minor delays between Tower Hill and Earls Court. That's due to points failure at Whitechapel. And no service on the Hammersmith and City line between Liverpool Street and Barking, and severe delays on the rest of the line due to that points failure. And that's your latest traffic and travel.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Like a gold.
4: Yeah.
3: Like a gold.
4: Like a gold.

0: भई ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ मेरा साथ आपको पसंद आया, मेरे चुने हुए गीत, मेरी बातचीत आपके मन को भा गई, आपने सभी के सभी गाने इंजॉय किए। अब अगली मुलाकात मेरी कल होगी, जी हाँ, आई विल बी सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्म भट्ट अगेन। तो कल 1 बजे मेरा साथ दीजिए। मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह ऑन लाइका गोल्ड, एंड दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर होंगे हमारे राज बदन जी। तो साथ दीजिए, 7 बजे इस स्टेशन पर पहुँचेंगी कौन, अश्विनी, उनका भी साथ दें। मुझे बाय, थैंक यू फॉर कीपिंग मी कंपनी। कल फिर मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।
1: Bali Brambat on Gold Afternoons.
2: You're listening to Bali Brambat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: For £1, you'll get 128 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: आ गए जी आ गए सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे listeners, madam ji, sir ji, सारे handsome hunk and gorgeous बालाएं, आप सबका स्वागत है द इवनिंग शो विद अश्विनी में. कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? थ्रिलिंग थर्सडे में आ गए आप और हम, और हमने दो गानों के साथ में आगाज किया इस पहले आवर का. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक. ये मैं तो नहीं हूँ अकेली, आई एम श्योर आप सबको भी वही एक्चुअली एहसास हुआ है जो मुझे हुआ है. मुझे रात दिन, मतलब सोनू निगम ने क्या गाया है भाई, वी गेट गूज बम्स. अच्छा गूज बम्स नहीं तो कुछ केमिकल लोचा होता है फॉर श्योर इस गाने के साथ में, राइट. सेकेंड ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज़ में सौतन फिल्म से जिंदगी प्यार का गीत है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक. दो बड़े ही सुंदर गानों के साथ में हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है. एंड अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है. दे दनादन सारे जो लोग हैं अपनी अपनी नाम की अटेंडेंस लगवा रहे हैं. कोई शुभ संध्या कह रहा है, कोई गुड इवनिंग कह रहा है, किसी ने कहा हमने आपको मिस किया. कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं थी, आप कहाँ थे? और होमवर्क हमेशा की तरह ऐसे थोड़ी होता है, गपशप तो चलती रहेगी. दीदी होमवर्क भी तो देगी आप सबको. ओके तो मेरा होमवर्क है, एक तो ना यहाँ पे झुलसती गर्मी, सनस्क्रीन लगा लगा के हम सब हैरान परेशान है ना, और 30s में जो टेम्परेचर है वो हम सब ने आनंद लिया उस टेम्परेचर का, लेकिन बैक टू 20s जब टेम्परेचर आता ना तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है. और वो जो पुरानी फिल्मों में होता था ना, वो सितार का म्यूज़िक टंग टंग टंग टंग टंग एंड द लीड एक्ट्रेस यूज़ टू रन यहाँ से वहाँ. वैसे आप मुझे इमेजिन कर लो, अगर आपने मुझे देखा है तो जस्ट इमेजिन कर लो कि अश्विनी यहाँ से वहाँ बिकॉज ठंडा हो रहा है मौसम, इसलिए झूम रही है ना, पंछी बढ़ूँ उड़ती फिरूँ मस्त गगन में. वही वाली मेरी हालत होती है जब मौसम ना सुहाना हो जाता है. होमवर्क, चलो गप्पे मस्ती, बहुत तारीफ हो गई है ना, अब ले लो होमवर्क. अच्छा समर डेज चल रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. तो समर डेज में स्पेशली आपका फेवरेट ड्रिंक क्या होता है? समर डेज में अपने आप को आप हाइड्रेटेड कैसे रखते हैं? व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रिंक? पानी, ये उत्तर मुझे कतई मत देना है ना, उसको मैं ऐसे रॉन्ग करके साइड में रख दूँगी. ओके और जो पेय, जो ठंडक वाले पेय हमें और किसी दुनिया में लेके जाते हैं, उस पेय के बारे में भी मैं नहीं बात कर रही. मैं नॉर्मल हम अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रखते हैं गर्मी के दिनों में उसकी बात करें. ऑब्वियसली आम का पन्ना होता है बिकॉज सीजनल होता है आम. फॉर मी आई लव ठंडाई. इफ़ एनीबडी नोज ठंडाई जो होती है, नहीं जिसमें वो भांग भांग होती है वो नहीं बाबा, ये प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स की ठंडाई होती है. यू एड इट इन ठंडा ठंडा मिल्क, उसमें आइस डाल लो बहुत सारे क्यूब्स, डन सॉर्टेड. ठीक है बताइए. आई हाय मैंगो लस्सी, क्या बात है, आने दो आने दो. मैंने एक्चुअली बड़ी लालची और बड़ी मतलबी भी हूँ कि आप लोग जो ये सारे ड्रिंक्स के नाम बताएंगे ना तो घर वालों को अभी समझ में, बस ये सुना था मैंने, ये पढ़ा था मैंने, ऐसे होने वाला है. अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट. आशा भोसले की आवाज़ में ओ माई गॉड. वॉल्यूम अब अगर रखना है ना तो अब रख लीजिए. खुशबू फिल्म से सुना रही हूँ, बेचारा दिल क्या करे.
0: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Like a gold. Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
2: at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
2: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: KMB with Shanila presents London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show. Top designers from Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan and Middle Eastern communities showcasing stunning bridal collections live on the runway. Planning a wedding? Find everything under one roof. Plus, enjoy Qawwali Night by Ahmed Shah and group. Happening on Friday the 12th of June at the Willows from 1 p.m. till late. Tickets on Eventbrite. Call 07989 972879.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
12: गारंटेड
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
12: फोन 02085748410।
11: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
14: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
15: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लेक डिस्ट्रिक्ट, डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द नेदरलैंड्स, स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 1035 AM par, DAB Digital Radio par, Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
17: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियाल, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 26 मिनट्स पास्ट 7, 7:26, 28th ऑफ मई, थर्सडे, जिसे हम बुलाते हैं इस शो में। शो का नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी। थर्सडे सिर्फ थर्सडे नहीं है, थ्रिलिंग थर्सडे होता है। ये शब्द थ्रिलिंग जो है ना, ऐसी थ्रिल पैदा कर देता है। वो थ्रिलर मूवीज जो हम देखते हैं, क्या होगा क्या होगा, वी आर ऑन द एज ऑफ द सीट, अब क्या होगा, है ना। तो शो में अब क्या होगा? शो में मस्ती, मजाक, गपशप, इंटरेक्शन होगा और कितने सारे ठंडे ठंडे ड्रिंक्स आप लोगों ने बताए हैं। किसी ने बताई है लस्सी, किसी ने बताया फालूदा, किसी ने कहा ठंडाई, किसी ने कहा नींबू शरबत, किसी ने कहा आम का पना, किसी ने कहा हम तो भाई चाय वाले, हम तो चाय ही पीते हैं। किसी ने कहा कोल्ड कॉफ़ी, ओए होए क्या बात है। किसी ने कहा छास, छास इज बटर मिल्क, एग्जैक्टली बिल्कुल। और क्या है भाई, मैंने पहले ही कहा कि भाई जो है ना, हम घर में बना के जो पेय पीते हैं उसके बारे में बात करें, ठंडे ठंडे। सो थैंक यू। देखिए कितनी सारी वेरिएशन हम सबको मिली है। व्हेन इट कम्स टू समर डेज, एक्चुअली बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, तो अप्रैल में जो है, अप्रैल में ये होता था समर वेकेशंस पूरे दो महीने के। एंड आई यूज़ टू गो टू माई ननिहाल इन इंदौर, आई एम बॉर्न इन इंदौर, सो वहाँ पे हम लोग जाते थे समर वेकेशन में, ऑल कजिन्स हम लोग सब आते थे। तो आजकल जो हम रील्स देखते हैं ना कई जगह पे कि खुले आसमान के नीचे, एंड माई मामा जी हैड अ फार्म हाउस, तो हम लोग एक्चुअली खुले आसमान के नीचे हम लोग गद्दियाँ बिछा के, वो टिमटिम सितारे, वहाँ पे हम लोग सोया करते थे। पूरे खेत के बीच में एक एरिया था, एंड देन मोर नाचते हुए आते थे और सांप भी आते थे, हेलो जी क्या हाल चाल सब ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सोचिए हमारे क्या हाल होते होंगे इसमें, बट इट वॉज ब्यूटिफुल। आई थिंक प्रीवियसली वी ऑल हैव इन्जॉयड जो फार्म हाउस का कंसेप्ट अभी है, वो हमने एवे ही मतलब बड़ा नेचुरली, बड़ा ऑर्गेनिकली, बिना पैसे दिए अपने मामा जी के यहाँ पे जा के हम लोगों ने ये इन्जॉय किया है। एंड समर वेकेशंस की बात होती तो बोर्ड गेम्स, बिकॉज बाहर धूप इतनी ज़्यादा है, बाहर जाके खेल नहीं सकते। सो द वन गेम विच आई रियली लव टू प्ले विथ माई कजन्स, एक तो कैरम हुआ करता था, उसके बाद मैं चेस खेलती थी। अब चेस में तो सिर्फ दो लोग और वो भी बड़े दिमाग वाले लोग, सो जी बिल्कुल थोड़ा मेरा दिमाग डेवलप हो गया था तो मैं चेस भी खेलती थी। बोर्ड गेम्स के बारे में भी बातें हो रही है आज ना, समर्स के बारे में बातें हो रही, तो दिल खोल के आपको जो जो शेयर करना है ना, बिल्कुल बताइए कि अश्विनी हम

0: दिल ही तो दिल है 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मन्ना डे की आवाज में सुनाया आप सबको ये क्लासिकल क्लासी हिट सॉन्ग। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये क्लासिकल सॉन्ग्स मेरे पापा को बड़े अच्छे लगते हैं। तो होता है ना कि घर में हमारे पेरेंट्स में से मम्मी पापा जो भी सुनते रहते हैं तो हम भी वही सुन सुन के बड़े होते हैं। तो माई फादर वॉज मोर इनटू क्लासिकल सॉन्ग्स एंड मम्मी तो थी ऑब्वियसली बॉलीवुड की, बिल्कुल चहेते सारे उनके जो सॉन्ग्स होते थे तो वो सारे सॉन्ग्स मेरी नस नस में हैं एंड शायद दैट्स द रीज़न आई बिकेम अ रेडियो प्रेजेंटर। इतना विविध भारती सुना हुआ है। सो यस, आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा कि अरे यार वो आप खेत खलिहान में सोते थे तो वहाँ पे सांप आते थे तब क्या करते थे? हम तो ऐसे ही मतलब ना घोड़े बेच के सोते थे, बट वी हैड डॉग्स दैट टाइम, है ना, वहाँ पे। तो डॉग्स का तो काम आपको पता है कि कितने विजिलेंट रहते हैं वो। एंड जैसे उन्होंने बार्किंग शुरू की तो घर के जितने एल्डरली मामा मामी मम्मी पापा चाचा चाची मौसी जो भी सारी हमारी बड़ी फैमिली थी देश तो डंडे लेके वो सांप की वजह शुश शुश शुश करके उसको घुमा रहे हैं, उसे भगा रहे थे। और कोई एक बच्चा अगर उड़ जाए उस आवाज़ से तो बाकी सारे बच्चों को हम लोग मतलब हम सारे कजिन्स उड़ जाते थे। तो कुल मिला के 15-20 बच्चे तो हम लोग थे वहाँ पे। आई एम श्योर कि ये सारा ना आप सबको भी बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा कि यार ये सब तो हमारी फैमिली में भी होता था, तो आप और हम एक ही तो हैं, तभी तो हम लोग सुनते रहते हैं आ जाके लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। सो कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रायणी संजय एंड द 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रेजेंट होटल चिगवेल एसेक्स। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका गोल्ड रेडियो।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: यादों की बारात आ गया फीचर इस आवर का। तो हावड़ा ब्रिज से गीता दत्त की आवाज़ में मेरा नाम चंचो, ये बहुत बड़े पर्दे में मैंने गीत दिखा था। इसके साथ में मेरी बहुत सारी यादें हैं। मुझे लगता है कई बार ना मैं बहुत बड़ी ऐसे स्टोरी टेलर हूँ, मैं आपको कितनी स्टोरी सुनाती हूँ। सोचिए आप और मैं अगर हम एक महफिल में बैठे होते, महफिल जमा के, कितना बड़ा एक तो हमारा होता जमावड़ा और हम सबके पास में माइक, कितनी सारी स्टोरीज, कितना मजा आता।
1: यादों की बारात।

0: दो तीन हो जाती है।
1: L Y C A This is Laika.
2: वेलकम जी, वेलकम। दिस इज सेकेंड आवर, 8:13, इट्स 13 minutes past 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मजा आ गया ना? पहला गीत था विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में, जीत फिल्म जो रिलीज हुई थी 1996 में। उसके बाद में हमने आपको सुनाया किशोर कुमार की आवाज़ में शोले फिल्म से ही गीत, 1975 में शोले रिलीज हुई थी। अच्छा, दोनों भी गीत ऐसे थे कि जिसमें पैर जो है आपके थिरकने थे। एक तो यारा और यारा, जैसे सनी देओल ने डांस किया है ना धरती में, आई थिंक काफ़ी मीम्स भी आए थे ना कि सनी देओल का वो डांस है, दोनों हाथ ऐसे उठा के और दोनों पैरों के साथ में बस वो स्टेप ले रहे हैं और ज़मीन में गड्ढे हो रखे हैं, ऐसे कुछ तो मीम भी आया था। दैट वॉज रियली फनी। एंड कोई हसीना में स्पेशली इस गीत का मज़ा मुझे कब आता है, जो वो घुंघरू की आवाज़ है ना, छन छन छन छन छन छन, आहा। एंड यकीन मानिए, यहाँ पे स्टूडियो में ये जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं इसका तो फुल वॉल्यूम, घर पे तो डांट पड़ती है ना अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो घर के लोग भी चलाएंगे और आस पड़ोस वाले भी, तो यहाँ पे तो खुली छूट है भाई, हमें पूरा मतलब वॉल्यूम बढ़ा के सुनो, बिकॉज दिस इज वॉट रेडियो एंड म्यूजिक डज टू अस। सारे हैप्पी हॉर्मोन्स जो है कूद कूद के ऊपर जो है पार्टी मना रहे हैं हमारे अंदर, है ना, तो ये पार्टी ऐसी ही जारी रहेगी। अगला गीत जो है मैं आपको सुना रही हूँ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, पतंगा फिल्म से। टुडे इज थ्रिलिंग थर्सडे भाई, अगर किसी को याद नहीं है तो थ्रिलिंग थर्सडे में आज मैं क्या सुनाने वाली हूँ बताते हैं कुछ देर में।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 रुपए, 128 इंडियन रुपीज। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो 1 gram का गोल्ड कॉइन हर हफ्ते जब आप 2000 pounds भेज रहे हैं। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
4: The Evening Show with Ashwini.

0: travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: भाई इंसान तो इंसान, पक्षी और जानवर भी ग्रुपिज्म करते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, एक्चुअली ये अभी की खबर नहीं, 2020 की खबर है, लेकिन बड़ी मजेदार खबर है। अ ज़ू इन इंग्लैंड बिकेम द सेंटर ऑफ वायरल स्टोरी आफ्टर 5 पैरट्स यानी कि मिट्टू जो है, जो ये मिट्टू थे, ये जो पैरट्स थे, दे वर सेपरेटेड फॉर स्वेयरिंग एट विजिटर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ चैनल्स। जो लोकल वहाँ के पार्क के भी लोग थे, उन्होंने बताया कि 5 अफ्रीकन ग्रे पैरट्स नेम्ड जो भी उनके नाम थे, आफ्टर बीइंग क्वारंटीन टुगेदर द बर्ड्स क्विकली पिक्ड अप फाउल लैंग्वेज एंड बिगिन कर्सिंग एट गेस्ट। पार्क चीफ एग्जीक्यूटिव सेड कि भाई इनके स्वेयरिंग की वजह से इतने हम परेशान हो गए, ये पांचों मिल के जो है ये स्वेयरिंग लोगों पे स्टार्ट कर देते थे जब भी विजिटर्स आते थे। अब ये मतलब हंसने वाला तो एक्चुअली मामला बन ही गया है, बट ये होता है कि जहाँ जहाँ से जो भी भाषा हमारे एनिमल्स भी सुनते हैं ना, वो यूज टू हो जाते हैं। आई शेयर दिस बिफोर कि आई वॉच अ होल लॉट ऑफ रील्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और पांडा स्पेशली अभी मेरी टॉप लिस्ट पे चल रहा है कि मैं पांडा के बहुत सारे वीडियोज़ देखती रहती हूँ। तो पैरट्स की भी लिस्ट देखती हूँ, तो देयर इज़ दिस इंडियन कोई लेडी है जिनके यहाँ पे पैरट है, और वो जिस तरीके से अपने पैरट के साथ में गपशप करती है, दैट इज़ सो क्यूट। मतलब सच में आप एनिमल्स और बर्ड्स के साथ में बातें करना शुरू करें ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ज़िंदगी का एक इतना अनोखा सुख जो है उसका आप अनुभव लेंगे। अनुभव तो आप यहाँ पे ले रहे हैं बहुत ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीतों का। अगला गीत जो मैं आपको सुना रही हूँ, दैट इज़ लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में आन मिलो सजना का टाइटल ट्रैक। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
2: At Tesco Mobile, get the iPhone 17 with all day battery life and 12 gigs of data for just £36.99 a month for 36 months with club card prices, saving you £162. Plus, you'll get £30 worth of club card points worth double with reward partners, or even triple with selected eating out venues. More points, more summer. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 12th of July. Club card and 36-month credit agreement required. Savings calculated on contract duration. Terms at tescomobile.com/terms.
0: This is Ash Winnie in for Anissa Nazir on The Evening Show.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर travel mantra?
5: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
6: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
3: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
2: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208767 7627.
6: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: After the huge success of its Harrow-based office, Danube Properties Dubai is delighted to invite to announce the opening of their second London office in Knightsbridge this Saturday. Team Leica Radio Network will be broadcasting live from 11 a.m. up to 2 p.m. to mark the special occasion. Watch out for updates on Leica Radio's Instagram and Facebook pages from the grand opening. आन मिलो सजना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुनाया आप सभी को ये गीत। मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 33 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विथ अश्विनी। और अब इमोशन ऑफ द डे, थ्रिलिंग थर्सडे है, मतलब ऐसा समझ ही लेते ना कि वीकेंड नियरली शुरू हो गया है। तो थ्रिलिंग थर्सडे के लिए आप सभी के लिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में जॉनी मेरा नाम इस फिल्म से, ओ मेरे राजा।
0: अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो। इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: ये है
0: लाइका गोल्ड। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।

0: हमारा एपिसोड नंबर 18 आ गया है. मेनोपॉज इज द टॉपिक. रूबी रजा ने इस टॉपिक पे बात की है. आ हॉट फ्लश इज स्टिल हुशिश इन आ कम्युनिटी एज साउथ एशियंस डू वी डाउन प्ले द चेंजेस इन वुमन. बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है. लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. भाई कल हमने और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जिसमें मैं भी थी एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. हमने मेंटल वेलनेस पे बात करी है. बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है वो एपिसोड. आएगा जल्द वो भी आएगा तो उसके बारे में भी हम यहाँ अनाउंस करेंगे.
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
7: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
6: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
7: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
6: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
7: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે. આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
6: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
7: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
8: ધીસ ઈદ ઉલ અઝ્હા આઈ સ્ટે ક્લોઝ ટુ વોટ મેટર્સ વિથ રેમિટલી, લાઈક સેન્ડિંગ અ લિટલ સમથિંગ ટુવર્ડ્સ અમીસ ફેમસ બિરયાની વેર ધેર્સ ઓલવેઝ રૂમ ફોર seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
9: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
10: Leica Gold.
9: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.67 Indian rupee, 374.35 Pakistani rupee, 441.5 Sri Lankan rupee, 164.96 Bangladeshi taka, 84.92 Afghani.
11: Leica Radio.
9: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
11: Leica Gold.
9: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £107.63 per gram.
9: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: Like हाथ में ला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में। टेम्परेचर्स अब जाके ज़रा अच्छे हो रहे हैं। सभी लोग हमें मैसेज करके कह रहे हैं कि भाई हाय हाय गर्मी, उफ़ उफ़ गर्मी तो हो रखी है। और अभी जो हमने आप सभी को गीत सुनाया था मुकेश जी की आवाज़ में, राम करे ऐसा हो जाए, मिलन फिल्म से ये गीत किया था, 1967 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। देखिए हम लोग जब भी मौसम का जो तकाजा होता है उस हिसाब से आप सबके लिए गीत भी चुन के लाते हैं ताकि वो जो है आपकी लाइफस्टाइल के साथ में मैच हो सके। जब भी प्लेलिस्ट करने में बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ आज इस टॉपिक पे बात करेंगे ना, तो ये गीत लेके चलते हैं। ओके, और उसके पहले जो हमने आपको सुनाया गीत इमोशन ऑफ द डे में, दैट इज़ थ्रिलिंग थर्सडे, तो ओ मेरे राजा, ओ गॉड, देवानंद एंड हेमा मालिनी कितने प्यारे लगे हैं दोनों। उसमें उनके एक्सप्रेशन इतने तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, ये वाला वो साकाज हम कितना प्यार से हंसते गाते हुए। कभी आपके साथ में हुआ है ऐसे कि भाई बहनों के साथ में या अपने बच्चों को कभी आप डांट रहे हैं? आई हैव डन दिस। हम लोग कभी तो किसी टूर्स पे गए थे, मेरे दोनों बच्चे जो हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे मूड में थे, तो अब ऐसे होता ना कि इतने सारे लोगों के बीच में आप चीख चिल्ला के तो बात नहीं कर सकते, ज़ोर से तो डांट नहीं सकते। अब थोड़े एक्टिंग स्किल्स यूज़ किए, चेहरा ऐसे रखा मुस्कुराते हुए और बड़े प्यार से मराठी में मैंने कहा कि बेटा चलो अभी घर चलते हैं ना, घर चल के तुम दोनों की मैं बहुत अच्छे से क्लास लेने वाली हूँ। तो क्या आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया है विथ योर किड्स, या आपके साथ में आपके पेरेंट्स ने किया, या आपने अपने सिबलिंग्स के साथ में ऐसे किया कि चार लोगों के बीच में बैठ के आप कुछ बोल तो नहीं सकते बच्चों को, या फिर आपके साथ में आपके पेरेंट्स ने किया है हंसते मुस्कुराते हुए डांटना, है ना? बड़े मज़े आते हैं मुझे तो। हमारे में तो क्या, माई मदर यूज टू, तो वो तो आँखें बड़ी बड़ी कर देती थी तो हम समझ जाते थे कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन विद किड्स डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ नौटंकी इट्स अमेजिंग। आखिरी गीत जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हाय हाय, एक रोमांटिक ट्रैक बनता है ना, तो अमानत फिल्म से सुना रही हूँ आप सबको ये गीत। 1977 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। गीत, दूर रह कर ना करो बात। What a beautiful track, what a beautiful track। मोहम्मद रफ़ी के जितने भी फ़ैन हैं वो बड़े खुश होने वाले हैं, कहेंगे कि क्या बात है यार, सच में मज़ा आ गया। तो यही हम करते हैं कि आपको मज़ा आना चाहिए, आपने इन्जॉय करना चाहिए। और बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि अपने गार्डन में बैठ के वो शो सुन रहे हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
10: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
12: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
13: No more worries for me or you.
14: Southall Travel, at all protected.
15: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milayein 0208839080 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.
16: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
17: Transfer
3: transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
17: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
18: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
19: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
17: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
18: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
20: Feel the fun. PlayOjo.
21: 18 plus, gamble aware.
22: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
23: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
24: इवनिंग शो विद अश्विनी
25: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: वेलकम, दिस इज आवर 3 थर्ड आवर का आगाज बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ हमने किया, चांद छुपा बाजल में, उदित नारायण एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में हम दिल दे चुके सनम से चांद छुपा बादल में। सेकेंड ट्रैक, यस दिस वॉजंट इन सुरेश वाडकर्स वॉइस बट दिस वॉज इन येसुदास की वॉइस में, सुरमई अखियों में, सदमा फिल्म से सुनाया आपको। बहुत ही इमोशनल ट्रैक है ना, सदमा फिल्म के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो श्रीदेवी एंड आउटस्टैंडिंग एक्टिंग बाय कमल हसन। वो एंड जो है उस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देता है, यू गेट गूज बम्स राइट इफ यू हैव सीन दैट मूवी। बहुत ही खूबसूरत मूवी। तो इस आवर में मैं आपको गजल सुनाऊंगी, कवाली क्या अंदाज है बताइएगा जरूर। अब नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रही हूँ, मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में, संजोग फिल्म से, सुनिए बताइए पसंद आता है क्या ये गीत।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एंड कुमार सानू उनका साथ दे रहे थे, तो आपने बहुत ही बेहतरीन ट्रैक, वन ऑफ द रोमांटिक ट्रैक्स, बड़ा बढ़िया सा ट्रैक था वो, 90s वाले बच्चे आई एम श्योर खुश हो गए होंगे। ओके जी, सॉरी जी, माफ़ी जी, आज गज़ल नहीं है जी, आप लोग सब भूल जाते हैं, अल्टरनेट डे होता ना, एक दिन गज़ल एक दिन कवाली, आज है कवाली आप सबके लिए।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है Like a Gold. Like a Gold.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
10: For £1, you'll get 128.79 Indian rupee, 374.34 Pakistani rupee, 441.45 Sri Lankan rupee, 164.95 Bangladeshi taka, 85 Afghan Afghani.
11: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
10: Gold is currently trading at £107.63 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
10: टिक टिक करते हुए घड़ी के एक बार जरा टाइम मिला लीजिए. इट्स 41 मिनट्स पास्ट 9. और भाई बता दे आपको, आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ इट्स हैरो बेस्ड ऑफिस, डेन्यू प्रॉपर्टीज दुबई इज डिलाइटेड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ देयर सेकंड लंदन ऑफिस इन नाइट्सब्रिज दिस सैटरडे. टीम लाइका रेडियो विल बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम 11 AM अप टू 2 PM टू मार्क द स्पेशल ओकेजन. वॉच आउट फॉर अपडेट्स ऑन लाइका रेडियोज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस फ्रॉम ग्रैंड ओपनिंग. और बस टाइम फॉर मी टू से, हमेशा की तरह, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. प्यार दो, प्यार लो, पावर का यूज़ ना करो. अब तो आप सबको भी ये डायलॉग्स याद हो गए हैं. डायलॉग्स नहीं है भाई, तहे दिल से कहती हूँ. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, है ना. प्यार तो वैसे काफ़ी है. अपने आप का खूब ख्याल रखें. कल फ्राइडे होगा तो आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी। हाँ पहले बता रही हूँ, खा पी के बैठो, सारी कैलोरीज बर्न होने वाली है क्योंकि एज यूजुअल फुल ऑन मस्ती भरा शो होने वाला है। तो फ्राइडे मस्ती के लिए आप सब रेडी है ना? अब आप सबको भी आदत हो गई है, फटाफट खाना वाना खा के आप लोग रेडी रहते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट।
2: ये है लाइका गोल्ड।
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
13: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
0: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
1: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Line.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, event in Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: યુરોપ
7: ના 3-9 દિવસ ના ટૂર,
6: ફ્રાન્સ, સ્વિટરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
7: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
6: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
7: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર
6: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply.
0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार.

0: This is Like a Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
9: 25? Seriously?
8: Sounds like Ojo time.
9: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
8: Sorry about the wait. How can I help?
9: You can help me celebrate. I won.
10: Feel the fun. Play Ojo.
11: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gambler aware. T's and C's apply.
12: Like a gold par har raat ki yahi reet. पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: in Dubai
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram produced by Felicity Theatre India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July Eventim Apollo Hammersmith Hamare Ram book your tickets now visit www.eventimapollo.co.uk exclusive radio partner Like our रेडियो
4: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ